आप सबना दा निक्की जी कौर जिंद दे जीवन विच जी आया नू। अज जिंद कौर दा उस दिन नवे स्कूल विच पहला दिन। ओ बस निकलन तो पहला अपने सवेर दा नितनेम कर रही है। ओ सोचती सी कि अज सब कुछ ठीक रहेगा, पर जिंदगी एनी सौखी नहीं। जिंद कौर तुहानू एक आम जी कुड़ी जरूर लगेगी, पर ओ आम दी परिभाषा तो कितने दूर है। जिंद कौर इन्ना पाठ करती है, इन्ना नाम जपती है कि सचमुच उसके कोल रिद्धियां सिद्धियां हन कि वह दूजे लोगों विच सफर कर सकती है।

0: बस एक औरत है, हाँ इहदे नाल तां मैं इकल्ला निपट लवांगा।
1: ओ ना निपटा सकिया, बल्कि मैं ही जल्दी नाल ओनू निपटा दिता।
2: वाह, लगता है ए जंग करना जान दी है, पर मैनू नहीं हरा सकती।
1: गुरु साहिब जी ने आप मैनू बल बख्शिया, मैं एक नू मार मुकाया ते नाल ही होर जने मेरे ते भारू हो गए ते नाल दे नाल ही उन्हां नू भी खत्म कर दिता। मैं एक पल लई भी गुरु नू नहीं विसारिया। मैं बयान नहीं कर सकती कि वह कहो जिहा महसूस हुंदा है जदों कोई इन्नी बिपता विच होवे ते अपने गुरु दा ध्यान तार रहा होवे। गुरु जी दी शक्ति ते किरपा हेठ होना मैं बस ये कह सकती हाँ कि मैं इन्ना जानती सी कि इसका कोई फर्क नहीं पैंदा जो मेरे नाल हो रहा है। मैनू महसूस होया कि मैं इकली नहीं हाँ। मैं चारे पासों रोशनी नाल किरी हुई हाँ। अखीर वह मेरे ते हावी हो गए ते मैं निहत्थी हो गई। उन्होंने मैनू भी सुलगदी हुई अग विच सुट दिता। मैं अंत तक लड़ती रही, फिर मैं अपने आप नू इस मंडल विच पाया। गुरु साहिब पहला तो ही इत्थे सन, मेरा इंतजार कर रहे सी अपनी निगी गलवकड़ी नाल।
3: मैं हुण देख सकती हाँ, दुनिया नू लगता है कि तुसी बड़े दुख दा सामना करता, पर तुसी ता कुछ होर इसदे बिल्कुल उल्ट महसूस किता।
1: हुण तुहानू सब समझ आ गया ते तुहाडे नाल भी यही गल है। जदों तुसी गुरु पिता जी नू पुकारिया तां तुहानू पता ही नहीं सी कि तुसी की करना है, क्योंकि तुसी अपने आप नू असमर्थ समझिया। हुण तुहानू किवें दा महसूस हो रहा है?
3: मैनू एवें लग रहा है कि मेरे कोल दुनिया दी सारी शक्ति होवे।
1: ए शक्ति गुरु दे पासों ही प्राप्त हुंदी है। साडे नाल अपना मेल जरूर रखियो सिखी विच रह के।
4: उदो जिंद कौर गुरु गोबिंद सिंह जी दे सुपुत्रा नू अपने सामने प्रकट होंदे देखती है। उन्हां दे पिछे होर भी काफी शहीद सिंह हन।
5: तुहाडी सच्ची शरदा दे पलां विच असीं तुहाडे नाल हां ते तुहाडे लोड़ दे वेले असीं तुहाडे नाल खड़ांगे। कदे लुकियो ना, दिखा दो दुनिया नू कि तुसीं कौण हो।
3: मैनू नहीं लगदा कि मैं दोबारा कजरी धरांगी।
5: हा हा हा, शाबाश। पर जे तुहानू कदे डर लगे भी, उदो समां है योधिया दीआं वारां गाउण दा।
3: अच्छा, ओह कीहड़ी वार है?
5: हा हा हा, साडे कोल बहुत सारीआं वारां ने।
1: मैनू लगदा है इस समें ए वार साडे गाउण दे लई बिलकुल ठीक है।

0: राय जी बारे की सिखिया सी?
1: गुरु जी निमर हन, गुरु जी प्रेम दे सागर हन।
0: वधिया, बहुत वधिया। हुन की तुसी गुरु जी बारे होर भी जानना चाहुंदे हो?
1: हां जी जरूर।
0: ठीक है, आओ हुन आपां गुरु जी बारे होर जानिए। सीधे बैठ जाओ, अपनी अखां नूं बंद कर लो अते मेरे नाल जपो।
2: एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच।
0: अपने आप नूं गुरु साहब नाल इकमिक करो। धरती दे सारे जीवां लई अपने दिल विच प्यार रखदे होए जपो।
2: एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच।
0: तुसी हुण किवें महसूस कर रहे हो?
1: मैं बहुत सहज महसूस कर रही हूँ। ज्यादा खुश, शांत।
0: तुहानू पता है कि आपां किस शब्द दा जाप कीता है? ते इसदा भाव की है?
1: नहीं जी, मैं थोड़ा जानदी हाँ पर ज्यादा अर्थ नहीं पता। जदो श्री गुरु नानक देव जी वेई विच गए सन, ए उस समय उन्होंने उच्चारण किया सी।
0: असी हमेशा ही सीखते रहते हैं। जिवें जिवें साडा अनुभव वधदा जांदा है, सानू गुरु साहब दीआं सिक्ख्यावां बारे होर ज्यादा सोझी आउंदी जांदी है। पर इह वी सच है कि असी सब कुछ नहीं समझ सकदे। एक वार श्री गुरु हर राय साहब जी नूं कुछ सिक्खां ने इही सवाल पुछिया।
3: गुरु साहब, महाराज साडा एक सवाल है।
0: अते गुरु जी ने उन्हां दा सवाल सुनिया।
3: असी बहुत सत्कार नाल गुरबाणी दा जाप करदे हां अते असी हर वेले ही जाप करदे रहिंदे हां, पर कदे कदे सानू अर्थ समझ नहीं आउंदे कि असी की जाप कर रहे हां। ते जेकर सानू बाणी समझ ना आवे तो कि जाप करन दा फायदा है?
0: गुरु जी ने उन्हां दे सवाल दा उस समय उत्तर नहीं दिता। ते गुरु जी सिर्फ मुस्कुराए। गुरु जी ने सही समय का इंतजार किया ताकि वह उन्होंने उत्तर देने की बजाय अनुभव द्वारा सिखाउण। गुरु जी हमेशा सानू अनुभव तो ही सिखाते हैं। कि तुसी जानते हो कि उन्होंने की किया? उन्होंने कुछ दिन तक इंतजार किया। एक दिन गुरु साहब उन्हां नाल घोड़े ते सवार होके जा रहे सन। गुरु साहब ने सिंघां नूं रुकण लई कहा अते पुछिया, की तुसी उस मिट्टी दे घड़े नूं देख रहे हो?
3: वो जो जमीन ते टुट्टिया होया है? जी गुरु जी, दिख रहा है।
0: गुरु जी ने उन्होंने कहा, उस घड़े का एक टुकड़ा लियाओ। अते उन्हां विच्चों एक सिख उत्तर गया ते टुकड़ा चुक ले आया।
3: गुरु जी, ए है जी,
0: इस घड़े विच घिओ सी। क्योंकि यह धुप विच पिया होया सी, इस करके धुप नाल घिओ पिंगल रहा सी। इस करके धुप नाल घिओ पिघल गया सी। अते घड़े दे अंदरों पिंगल के एक लकीर बना के मिट्टी च समा रहा सी। श्री गुरु हर राय साहब ने समझाया, गुरबाणी सिमरन दे नाल इसे तरह हुंदा है। भावें सानू गुरु दे शब्द समझ नहीं आउंदे, पर जेकर असी भगती भाव नाल जपदे हाँ तां इह मन विच वस जांदे ने। बिल्कुल इस तरह जिस तरह घड़े नूं घिओ चिपक जांदा है। ते जिस दिन ज्ञान दी रोशनी साडे मन विच पैदा हुंदी है तां शब्द इस पिंगले होए घिओ दी तरह साडे मन विच समा के ज्ञान पैदा करदे हन।
3: मैं उस ज्ञान दी उड़ीक कर रहा, ओ भागा वाला दिन होवेगा।
0: फिर गुरु जी ने उपदेश दिता, भावें असी इस नूं ना समझिए पर गुरबाणी साडी मुक्ति दा राह है।
3: वाह जी वाह, वाहे गुरु।
0: देखो किवें गुरु साहब सानू किन्ने सुंदर ढंग नाल समझाउंदे हन। धन श्री गुरु हर राय साहब जी, धन श्री गुरु हर राय साहब जी, धन श्री गुरु हर राय।

0: अंत।
1: वाह, ये तो गुरुजी दा आशीर्वाद है।
2: एक खबर आग दी तरह हर पासे फैल गई अते जल्द ही सिमरन दे घर नूं टीवी दे पत्रकारां ने चारे पासों घेर लिया। सिमरन टीवी ते सी अते रिपोर्टरां नाल गल करके पूरी दुनिया नूं इस बेहतरीन कहानी बारे दस रही सी।
3: सिमरन जी, तुसी ए दसो कि तुसी उना लोकां नूं की कहना चाहोगे जो इस गल ते शक करदे हन कि ए रुख रातों रात नहीं उगे।
1: इस नाल कोई फर्क नहीं पैंदा कि तुसी मेरे ते विश्वास करदे हो जा नहीं। एक बार जदो असी सच देख लवांगे ते सारियां समस्यावां अपने आप हल हो जाणगियां। इस विच असी सारे इकट्ठे हां, सारे लोग, जानवर अते पौधे, धरती दा हरेक जीव अते इकट्ठे मिलके असी एक सुनहरा भविख सिर जांगे। सानू भाई कन्हैया जी नूं अपना आदर्श वजो देखना चाहिदा है।
2: तां दुनिया दे हरेक कोने विच लोकां ने खुद इस नूं अजमाया। उन्हां ने भाई कन्हैया जी नूं याद कीता अते वख-वख थावां ते बीज बीजने शुरू कीते, पर ए चमत्कार आउण वाले हालातां दा इक छोटा जिहा हिस्सा ही सी। सिमरन वल्लों शुरुआत विच बीजे गए रुखां दे खास बीज मिट्टी अते पानी राहीं होर रुखां नाल जुड़ गए। उन्हां दीआं जड़ां इक दूजे तक पुज गईआं अते जल्द ही दुनिया भर विच संघणे जंगल उगणे शुरू हो गए।
4: As Bhai Kanhaiya sees Ek Onkar, so do I see the one and all. Dhan Waheguru.
5: Jidda Bhai Kanhaiya ji samjhan Ek Onkar, ohi nazar nal dekha main saryan nu iksar.
6: Jang ru Bhai Kanhaiya kan dao Ek Onkar yang, wai kan dao liben, Dhan Waheguru.
7: Como Bhai Kanhaiya ve a Ek Onkar, yo también veo al uno en todos. Dhan Waheguru.
8: Con Bhai Kanhaiya puat,
2: दुनिया भर विच लोकां वल्लों कीते जा रहे सिमरन दी संयुक्त शक्ति दे नाल एह खास बीज जल्द ही उग गए अते बंजर जमीना भी खूबसूरत संघणे जंगलां विच तब्दील हो गईयां। एक महीने दे समय अंदर सिमरन बाहर गई अते उस ने एक बेहतरीन नजारा देखिया। उस ने अपने उपर आकाश विच दर्जना ही काले बदल वेखे। उस दे चेहरे ते एक बहुत वड्डी मुस्कुराहट सी अते उस दियां पूरियां अखां खुशी नाल चमक रहियां सन।
1: रुख मीनू लेके आ रहे हन, ए काम कर रहा है।
2: कुछ मिंटां बाद सिमरन खुशी नाल मीं विच नचण लग पई। पानी दियां बूंदां विच उछलदी हुई अते गोल गोल घूमदी हुई
1: ए काम कर रहा है।
2: जिवें जिवें दिन बीतते गए दुनिया विच होर रुख उगदे रहे अते सारे पासे सब कुछ फिर हरा भरा हो गया। लोग खुश अते आनंददायक हो गए अते इस सब लई उस एक रब वाहिगुरु जी दा बहुत धन्नवाद है।
1: ऐता बहुत ही सिख्या प्रद कहानी सी। अजिही होर कहानियां वास्ते सिखनेट दा ऐप डाउनलोड करो।